0: अच्छा एक बात बताओ, ये चरस पहले आई या करप्शन?
1: चरस पहले आई।
0: कैसे?
1: सुन, चरस में नशा है, नशे में पावर है, पावर में करप्शन है। कैसी गई?
0: क्या बात है, ब्रिलियंट।

0: I love you.
1: Rosie? Hey, Rosie! Rosie! पहले क्रिसमस में तो सबसे पहले आ जाया करती थी, मगर कुछ दिनों से लगता है तुझे कुछ हो गया है। कहीं किसी से लव वव तो नहीं हो गया
2: क्या?
1: ओफो, लव यानी प्यार, मोहब्बत।
2: वो होने से क्या होता है?
1: जब मुझे हुआ था
2: तो
1: मुझे नींद नहीं आती थी।
2: मुझे भी नहीं आती।
1: मुझे भूख नहीं लगती थी।
2: मुझे तो प्यास भी नहीं लगती।
1: दिल में दर्द होता था।
2: दर्द तो मुझे भी रहता है।
1: बस यानी कि तू गई काम से।
2: क्या?
1: ओफो, यानी कि तुझे प्यार का रोग लग गया है, और इस रोग की बस एक ही दवा है।
2: वो क्या?
1: वो ये कि जिससे प्यार हुआ है अगर वो दिल पे हाथ रख दे तो दर्द मिट जाएगा।
2: मारिया!
1: रोजी, ए रोजी, ओ गॉड,
3: क्या हुआ योयो?
1: देखो ना क्या हो गया है अपनी रोजी को।
3: ये रोजी तो हर रोज कोई ना कोई नाटक करती है।
1: नहीं नहीं, ये नाटक नहीं है, ये तो बेचारी सचमुच बेहोश हो गई है। कोई दवा दारू करो ना इस बेचारी का।
3: ये जो दौरा है ना, ये मिर्गी का है, और इसका इलाज सिर्फ जूता सूंघा।
1: नहीं!
3: देखा, जूते का नाम लिया और दौरा गायब।
2: बाय गॉड, आज क्रिसमस का दिन है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। ये दौरा मिर्गी का नहीं है।
3: तो यो, तूने बुलाया और मैं चला आया। यारों का टाइम मत बर्बाद कर, सच सच बोल, तुझे कष्ट क्या है?
4: मुझे दर्द रहता है। दिल में दर्द रहता है।
5: अच्छा?
4: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती।
5: बाप रे,

ये है ज्ञान, ये है कल्लू, ये है प्राण, तू क्यों रोता चंद्र भान, माने बेटा मेरी जान, ना हो रो रो के हलकान, तू है भारत की संतान, ले ले तू ये तीर कमान, मेरे प्यारे पहलवान, बचा ले अप...

एक बार भगवान शिव के दोनों पुत्रों कार्तिक और गणेश जी में बहस छिड़ जाती है कि हम में से बुद्धिमान कौन है। दोनों ही अपने आप को बुद्धिमान और बड़ा बताते हैं। इसी प्रसंग को लेकर कार्तिक और गणेश जी अपने पिता शिव शंकर और माता पार्वती के पास जाते हैं। भोलेनाथ और माता पार्वती उनका प्रसंग सुनकर उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए उनसे कहते हैं और ये भी कहते हैं कि जो पहले आएगा वही बुद्धिमान होगा। कार्तिक पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल जाते हैं और श्री गणेश नयन मूंद कर हाथ जोड़कर अपने माता पिता की परिक्रमा करने लगते हैं, क्योंकि माता पिता का स्थान तीनों लोकों से ऊपर बताया गया है। श्री गणेश की बुद्धिमता से भगवान शंकर प्रभावित होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी ही जीत हुई है। तो आइए भक्तजनों, सुनते हैं भोले बाबा का ये प्यारा सा भजन।

तैयार हो जा। सुनने वालों, उजाला ला रहे हैं उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में। फूड, म्यूजिक, डांस, शॉप, मार्केट, कल्चर, फैमिली एंटरटेनमेंट, टेस्ट, बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स। तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले। ब्रासा फेस्ट जादा 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center Den Haag mee. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the fire. अरे, सुन, वक्त ही कर। हाँ, चली ब्रासा फेस्ट, यस, फाज 1 इज volledig uitverkocht, sold out, haha, हम बोलत रहली तो से तो, heb jij nog geen tickets, dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2, te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe jaldi kermousi, चली घूमे, चली ब्रासा फेस्ट, हाँ, 100 चली ब्रासा फेस्ट, bestel nu via www.brasafest.nl. Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.

0: दुनिया गोल है, ऊपर से होल है, अंदर जो देखो प्यारे बिल्कुल पोलम पोल है। ये दुनिया गोल है ऊपर से।
1: ये कहां से मर गए, ट्यून बदलो।

चला ब्रासा मिला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में फूड म्यूजिक डांस शॉप मार्केट कल्चर फैमिली एंटरटेनमेंट टेस्ट बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स ब्रासा फेस्ट जाटरडे 29 एंड संडे 30 अगस्त इन जिया इवेंट सेंटर हे यू

मुंडन संस्कार होने वाले हैं पूजा ने रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल ना info@ujala.net info@ujala.net

0: स्टिक्टिंग अभियन स्टिक्टिंग स्वदेश और श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के साथ आप हर एक को प्रेम पूर्वक निमंत्रण दे रहे हैं। इस साल के पार्थिव शिव पूजन में हिस्सा लेने के लिए पूज्य पंडित मान्यवर श्री पंडित परशुराम रामलोचन तिवारी जी के साथ शिव पूजन इस साल है अगस्त के 9 तारीख दिन में 12 बजे से 6 बजे तक स्ट्रांत नॉर्थ आ जूतरमीर में, और पूजन में पान फूल प्रसाद अर्पण करने के पूरा पूरा मौका दिया जाएगा। आप हर एक को प्रेम पूर्वक निमंत्रण है आने के लिए 9 तारीख अगस्त नई खन औखुस्त दिन में 12 बजे से स्ट्रांत नॉर्थ आ जूतरमीर में।
1: रात और दिन, सुबह और शाम, गजल है तेज इन द ऑटो एंड ऑफ योर वर्क मेट ओ जला रेडियो 63 कोकन स्ट्राइकन रेजन वर्कन यस टोर रेडियो ओ जला रेडियो द लुक्स्ट एंड गजलस्ट रेडियो फन हिल नीदरलैंड टू जानी है तो
2: Welcome by Experience Wedding and Event Center in Almere, het full service Indian wedding center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, alleen genieten van uw bijzonder dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt. 4 juli bestaat.

0: Goedenavond, dames en heren.
1: Nee, goedenavond, Heike. Goedemiddag.
0: Namaskar.
1: Je hebt Jello Radio's en allemaal hoe luid maar weer. Hamer er op hier. Namens mij ook een hele fijne middag. Aatje eet waar. Doet daar ik agus. En ik ben er vandaag met jou. Kriben half 20. Ja, ik denk het wel, ja. Het is vandaag zondag 2 augustus. और आज के दिन में हमें ऐसे लगे हैं कि आज के प्रोग्राम में एक घंटे के लिए कुछ गाने हम आपको सुनाने को जा रहे हैं फ्रॉम द आर्टिस्ट्स दी ऑफ 29 एंड 30 augustus op Brazzafest zullen aanwezig zijn op onze Brazzafest in GIA Event Center in Den Haag. 29, 30 augustus. Als jij je early bird tickets nog niet hebt gekocht, dan zou ik je willen adviseren om snel te zijn en snel te kopen via brazzafest.nl. Je programma hebben we naar Utix के मदद से एंड उजाला रेडियो के जरिए खास प्रोग्राम है ब्रासाफेस्ट के लिए ब्रासाफेस्ट जाटरडे 29 एंड संडे 30 अगस्त उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम पेश किया जा रहे हैं नॉर्मल्स utix.nl के जरिए एंड brasafest.nl के जरिए ई गनवा हैगा जे कर नाम है या हम लेबे और ओकर नाम है इबू वाग डिजाइन इज अर ओक मेट द लेजेंड्स ऑफ ब्राजाफेस्ट 29 एंड 30 अगस्त इबू वाग डिजाइन

0: 15 krijgen via brasafest.nl. Brasafest.nl. बहुत ही makkelijk hegen, बहुत ही आसान hegen. Tu ja aur kinla pan karta. Early bird tickets fase 2. Umr वाग्य तो सैन को छोड़कर हम चलते हैं वो शख्स की तरफ जो हलचल भी मचाते हैं. हाँ, मिस्टर ब्लैक. रानी और राजा सुन.
1: अरे राजा जो बैठा सीज पर, रानी की आसाई के.
2: Well, 16 ways to wine, girl, you better choose one.

kitna gezellig, kitna gezellig. Met Mr. Black, met de muziekformatie Express Kazaat, Express Kazaat. Rehe Gabi, Brasa Vesper. और ये प्रोग्राम हम बना रहे हैं यूटिक्स के जरिए एंड नेचुरली ब्रास एफएस के मदद से ये प्रोग्राम हम बना रहे हैं चेक फॉर ऑल इंफॉर्मेशन ऑन brasafest.nl और इस दिन पर भी रहेगा विनय कल्पू फ्रॉम सारेगामा रिकॉर्ड्स विनय कल्पू

कौप के साथ आर्य भी तीरा कुसुल, तो तीरा कुसुल के आवाज में हम सुनते हैं, चलिए आ रहे हैं तीरा कुसुल, ऑफ फ्रॉम सारेगामा रिकॉर्ड्स क्रू के मेंबर जो है

0: Live vanuit de Hoofdstad. उजाला रेडियो देश भर में तू जाना है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीदरलैंड तू जाना है तो ढिंढोरा बजा दीजिए
1: Klaar voor de volgende stap?
0: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Saalgren hè. Of ga je trouwen? Door Viva Hone Wale, door Shadi Hone Wale hè. Ja, Kizika Moende Sanskar hè. उजाला रेडियो पर फरमाइश आप दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो और उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नंबर info@ujala.nl

उजाला के ऑल टाइम फेवरेट्स जो हर दिल को खुश कर देते हैं। सुनिए और गुनगुनाइए संगीत के रंग उजाला रेडियो पर।

0: live vanuit de hoofdstad. Uzana Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नार info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

स्टिक्टिंग अभियन स्टिक्टिंग स्वदेश और श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के साथ आप हर एक को प्रेम पूर्वक निमंत्रण दे रहे हैं। इस साल के पार्थिव शिव पूजन में हिस्सा लेने के लिए पूज्य पंडित मान्यवर श्री पंडित परशुराम रामलोचन तिवारी जी के साथ शिव पूजन इस साल है अगस्त के 9 तारीख दिन में 12 बजे से 6 बजे तक स्ट्रांत नॉर्थ आ जूतरमीर में, और पूजन में पान फूल प्रसाद अर्पण करने के पूरा पूरा मौका दिया जाएगा। आप हर एक को प्रेम पूर्वक निमंत्रण है आने के लिए 9 तारीख अगस्त नई खन औखुस्तस दिन में 12 बजे से स्ट्रांत नॉर्थ आ जूतरमीर में।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुनते हैं। आप सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और आदाब। आज इतवार का शाम का प्रोग्राम और इतवार 2 अगस्त का प्रोग्राम है। जवेल सोंदाग 2 अगस्त 2026। गुडमिडाग अलोमाल। हमेशा की तरह जिनके घर पर कोई भी खुशियां, जन्मदिन, सालगिरह, विवाह, शादी हो, आप रिको हार्दिक से बधाई और तहे दिल से मुबारकबाद अर्ज किए जाते हैं। जो कोई बीमार या तो लाचार है तो उनकी तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना, अल्लाह से दुआ है आप रिकी ताकत और तंदुरुस्ती के लिए। आज इतवार का शाम का प्रोग्राम जो आप लोग सुनने को जा रहे हैं, यहाँ से प्रोग्राम को हम शुरू करेंगे वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा। यहां से लेकर ठीक शाम में 5 बजे तक आप लोग सुनेंगे वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठ गाना हंगामा। मैं हूं सुभाष और जहां तक मेरी आवाज पहुंचती वहां तक हम आप सभी को प्यार से, दुलार से।

अगर आप लोग हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहेंगे तो हमारा व्हाट्सएप का फोन का नंबर है 9203639008 पर, जबल 9203639008 पर। तो चलिए आज का शाम का प्रोग्राम में पहला बैठक गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे, तो गाने वाले होंगे श्रीमान सत्यानंद रे।

शबन शबन शिव भोला भंडारी जग में अवसर से बैठे गाना जी प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने श्रीमान सत्यानंद रेखा जी की आवाज में करीबन 15 मिनट व्यतीत हो चुके 3:53 चाहे यहां पर आप हमें सुनते होंगे सुनते जाइए जिस तरह से माइक बुद्धू भाई माइक बुद्धू जी अपन ओतो में सुने हैं अभी के साथ तो ये गाना आप दोनों के नाम और इस तरह से आप लोग सुनेंगे और गाने बोलेंगे देवराज प्रसाद जी।

वाले शाबाश शाबाश। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने और खास करके दिवरा प्रसाद की आवाज में एंजॉय। भाई रवि एन भाई माइक बुद्धू जी दनहा शहर जा रहे हैं, ओतुआ में बैठ करके सुने हैं। एंड चलिए लाइव स्पेन शहर में जहां पर इस वक्त सानू जी भी प्रोग्राम को बैठ के सुने, तो ये गाना तुम्हारे नाम प्यार के साथ

आई बॉय शाबाश शाबाश। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने सरविन तेजू के आवाज में, एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तुरंत होत में सुनीता भी प्रोग्राम को बैठ के सुने, तो ये गाना प्यार के साथ तुम्हारे नाम।

वाली शाबाश शाबाश बोले बालमा रतिया के खिड़की खोली रही रतिया कहा गवायो ना इवेरवा में से कर खिड़की चाहिए खोले के एंड माइक एंड भाई माइक बुद्धू एंड रवि अभी अपन तो वह में सब मोई खनित करे जाए तन हाथ बचाई के चलिए एंड अब की बार सीता आई हार्लेम के लिए

और इस तरह से देवानंद गाथो के आवाज में गुड़िया नाचे रे हम लमर में, जहां पर इस वक्त भाई पवन प्रोग्राम को बड़ी कर सुने तो ये गाना तुम्हारे नाम।

वेल शाबाश शाबाश बोले ए लड़की एगो बात माइल बोले तो के हम चाहिला रतिया के जब सुतिलो तुर सपनवा हम देखिला या वेल आई बॉय अमसरम सही तो उसमें बैनी रामसरन भी प्रोग्राम के ऊपर की सुने हैं तो ये गाना तुम्हारे नाम बैनी।

वेल और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने दीपक कन्हाई के आवाज में एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा है एंड देखा जाए होफ दौरप शहर में आनंद मंगरू भी प्रोग्राम को बैठ के सुने हैं तो ये गाना तुम्हारे नाम रविंदर भोला सिंह के आवाज में

चल यार मोटी मोटी सर्वा आई सरोसे रविंदर भोला सिंह केवा उसमें गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने एंड यू आर उजाला रेडियो है। और देखा जाए इधर हाँ सैफुल्लाह शहर में जहां पर भाई लक्ष्मण प्रोग्राम को बैठकर सुने यू आर उजाला रेडियो बेस्ट इन दिस का प्रोग्राम।

शबा सैया सैया ले गई जिया मेरा पहली नजर, और मोतीमाला भोला सिंह जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, और मेरे शहर में देखा जाए माला मुंगार भी प्रोग्राम को बरकर सुने हैं, तो ये गाना तुम्हारे नाम।

हमारे प्यारे सुनने वालों, ठीक है, चार बजने वाले हैं नाद ब्रेक, नाद रखलाम बने के तुरख यार। अगर आप लोग बैठ कर भोजन करते होंगे तो भोजन कीजिए हमारे साथ, या तो हमें लेके घूमत हो ये तो मोई से घुमाइए। बेरवा बड़ा विशाल बा, बेरवा मोई बा, एंड यू आर उजाला रेडियो वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा।

के घर पर आने वाले दिनों में किसी का मूर्ण संस्कार है, मूर्ण संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं, हमारे प्यारे सुनने वालों, बैठक गाना हंगामा वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम, इतवार का शाम का प्रोग्राम आप सभी के नाम। करीबन 12 मिनट व्यतीत हो चुका है 4:12 ऊपर, फिर दूसरा भाग और आखिरी भाग बैठक गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे, वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा। चलिए अब की बार बैठक गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे, तो अलमेर शहर में भाई मनोज मुंगार प्रोग्राम को बैठकर सुने, इस गाना को मांग किया है

शाबाश शाबाश। और इस तरह से सत्यनंद रेखा जी के आवाज में ये सुंदर सा गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठ गाना हंगामा जो आप लोग सुन रहे, यू आर उजाला रेडियो का।

इतवार का शाम का प्रोग्राम एंड अब की बात देखा जाए हम सलाम सहित हो उसमें हमारे मामी खैरदा जी प्रोग्राम को बैठ करके सुने हैं।

चादर बिछाओ बलमा बोले कि और इंद्र लगे सोई रही ना। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुनी, आशा है कि ये गाना भी आप लोग को पसंद आए होंगे। और देखा जाए रोहतनाम में बेटा बैठकर प्रोग्राम सुने, कहती सुने है और कहती क्या करे है, बारह बाका करे यार, बारह बाका करे है, बारह छाने है। आई बोई एच स्मार्ट क्लब।

0: शाबाश शाबाश शाबाश गुड़िया के चरले जवनिया एंड बोले अमुआ बीने जाए एंड बेल्खी शहर में मीला भी प्रोग्राम को बैठ कर सुने हैं, तो ये गाना तुम्हारे नाम
1: जी आता है।
0: आया या।

तरसाई एंड यू आर उजाला रेडियो वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा वेल चलन दे यार आई वेरो में तू बारह छाने लेकर बारह के साथ चटनी और ले ले चटनिया

वलियार जमुना किनारे मोरा गांव एंड संवलिया बोले आ जाइए यार सेकर आ जाइए आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जबाओ चलन दे यार वैसे इसका प्रोग्राम बैठ गाना

ठीक 5 बजने वाले हैं। हम आप लोग से फिर आने वाले दिनों में फिर आप लोग से मिलेंगे। आज का प्रोग्राम जो वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा आप लोग सुने, आशा जिस तरह से हमने बनाए आप सभी सुनने वालों को पसंद भी आए होंगे। हमारा साथ देने के लिए, हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद एंड शुक्रिया। अपना इतवार का शाम और रात्रि तो लोग मौज से बिताइए, मौज से रहिए। जो भी करना है आज कर लेना, कल के बाद आना करिए यार। कल के वादा करिए तू, ना कल देख ले ना हम देख ली। आप लोग मौज से रहिए, अपना आपके जरूर से ख्याल कीजिए। खिदमत की आपका दोस्त सुभाष, आप लोग को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राम राम, नमस्ते एंड खुदा हाफिज। बाय।

0: are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedenavond, dames en heren.
2: Goedenavond, Nahega. Goedemiddag. Namaskar. Yeah, we radio en all of my who loud my beer. Hamad Rasabhi, namens mij ook een hele fijne middag. Aatje eetwaar, Dotarik August. En ik ben er vandaag met jou, Kriben, half 20. Ja, ik denk het wel, ja. Het is vandaag zondag 2 augustus. और आज के दिन में हमें ऐसे लगे हैं कि आज के प्रोग्राम में एक घंटे के लिए कुछ गाने हम आपको सुनाने को जा रहे हैं फ्रॉम द आर्टिस्ट दी ऑफ 29 एंड 30 augustus op Brazzafest zullen zijn, zullen aanwezig zijn op onze Brazzafest in GIA Event Center in Den Haag. 29, 30 augustus. Als jij je early bird tickets nog niet hebt gekocht, dan zou ik je willen adviseren om snel te zijn en snel te kopen via brazzafest.nl. Je programma hamraren he, Utix के मदद से एंड उजाला रेडियो के जरिए खास प्रोग्राम है ब्रासाफेस्ट के लिए ब्रासाफेस्ट जाटरडे 29 एंड संडे 30 अगस्त उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम पेश किया जा रहा है नॉर्मल्स utix.nl के जरिए एंड ब्रासाफेस्ट.nl के जरिए ई गनवा हैगा अजय कर नाम है या हम लेबे और उनका नाम है इबू वागी डिजाइन इबू वागी डिजाइन इज अर ओक मेट द लेजेंड्स ऑफ ब्राजाफेस्ट 29 एंड 30 अगस्त इबू वागी डिजाइन

0: 15 krijgen via brasafest.nl. Brasafest.nl. बहुत ही मक्कलक है, बहुत ही आसान है, तू जा और किन ले अपन करता है. Early bird tickets, phase 2. उम्र वाग डिजाइन को छोड़कर हम चलते हैं वो शख्स की तरफ जो हलचल भी मचाते हैं. हाँ, मिस्टर ब्लैक. रानी और राजा सुन.
1: अरे राजा जो बैठा सीज पर, रानी की आसा लगाई के.
2: Well, six main ways to wine, girl, you better choose one.

Kidnagezellig. Kidnagezellig met Mr. Black. Met de muziekformatie Express Gezaad. Express Gezaad. Rehe Gabi. Brasa Vesper. और ये प्रोग्राम हम बना रहे हैं यूटिक्स के जरिए एंड नेचुरल ब्रास एफएस के मदद से ये प्रोग्राम हम बना रहे हैं. चेक फॉर ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ brasafest.nl. और इस दिन पर भी रहेगा विनय कल्पू फ्रॉम सारेगामा रिकॉर्ड्स. विनय कल्पू.

विनय कल्प के साथ आर्य भी तीरा कुशल, तो तीरा कुशल के आवाज में हम सुनते हैं। चलिए आ रहे हैं तीरा कुशल, ऑफ फ्रॉम सारेगामा रिकॉर्ड्स क्रू के मेंबर जो है

और दिल कभी हमको समझाता है और हम दिल को कभी समझाते हैं, ऐसा भी होता है। आप सुने फिल्म अकेले हम अकेले तुम का गीत, और गीत के गाने वाले कुमार सानू एंड अलका जी।

दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, कुमार सानू की आवाज और फिल्म परदेश का गीत, स्टेशन उजाला रेडियो।

हैं बीनू कोटरावर, तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं, सुनवा लो। तो दीजिए आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो, 15 फरमाइश, 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। दिस खाई बीनू कोटरावर, तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाला है, नेम कॉन्टैक्ट ऑफ मैट उजाला रेडियो, ईमेल info@ujala.nl, 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

0: Stichting Abhiyan. स्टिक्टिंग स्वदेश और श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के साथ आप हर एक को प्रेम पूर्वक निमंत्रण दे रहे हैं। इस साल के पार्थिव शिव पूजन में हिस्सा लेने के लिए पूज्य पंडित मान्यवर श्री पंडित परशुराम रामलोचन तिवारी जी के साथ शिव पूजन इस साल है अगस्त के 9 तारीख दिन में 12 बजे से 6 बजे तक स्ट्रांत नॉर्थ आ जूतरमीर में, और पूजन में पान फूल प्रसाद अर्पण करने के पूरा पूरा मौका दिया जाएगा। आप हर एक को प्रेम पूर्वक निमंत्रण है आने के लिए 9 तारीख अगस्त नई खन और खुशतस दिन में 12 बजे से स्ट्रांत नॉर्थ आ जूतरमीर में।
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
2: Ujala, Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. Hey you!

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टर्डम से सभी लड़कन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए सोमवार को 70 साल के आयु में जीवन तख यार औत लड़कन सुषमा, राकेश, माया, हेलन और सीमा के माँ सुरेन, दिनो, फेदो और जमाल के सास सभी लड़कन के नानी अम्स्टर्डम की रहने वाली विधवा सत्वती अनूप की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। स्वर्गीय श्री भागवत प्रसाद सुखाई के विधवा जो थी। अम्स्टर्डम से सभी लड़कन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते सोमवार को 70 साल के आयु में जीवन तक यार औत लड़कन सुषमा, राकेश, माया, हेलन और सीमा के माँ चार दामाद सुरेन, दिनो, फेदो और जमाल के सास सभी लड़कन के नानी अम्स्टर्डम की रहने वाली विधवा भागवत प्रसाद सुखाई की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। बेत्सी के नाम से या बेती के नाम से लोग इन्हें पहचानते और पुकारते थे और जो कि स्वर्गीय श्री भागवत प्रसाद सुखाई के विधवा थी। अर्थी के दाह क्रिया कल सोमवार दिन में 4 बजे मोरखन में दाख फिर उर किए जाएंगे। वैसखार्ड क्रिमाटोरियम ओक मेरवैक 275 अम्स्टर्डम उस दौरब में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06 45 57 03 25 05 47 57 03 25। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो इन परिवारों के दुख में शामिल है।

0: और जाते हैं। इसी के साथ आप उजाला रेडियो पर सुने मृत्यु समाचार
1: 24 uur per dag en 7 dagen per week de beste Hindoestaanse muziek op Ujjala Radio.

उजा रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ओटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे अबे प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैहक द बेस्ट उजाला रेडियो।

तुम पे हम है अटके यारा, दिल भी मारे झटके। इट्स यू आर उजाला रेडियो का पैगाम, मैं हूँ शहीद गुलजार। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप हमें जहाँ से भी सुन रहे हैं, आप सभी सुनने वालों को एक बहुत ही शुभ दिन मुबारक दिन अर्ज है स्टूडियो एम्स्टरडम से। बस आज का पैगाम में एक बार फिर से कुछ मिले जुले संगीत हम आपको सुनाने वाले हैं, कुछ मिक्स मक्स सॉन्ग्स। लीजिए मुलाहिजा फरमाइए इस नगमा से।

मेरी सोनी है, मेरी हीरी है, दिल दा तेरा है, जहाँ भी तेरी है। नबील शौकत अली की आवाज। स्टेशन है यू आर उजाला रेडियो और फोन का नंबर है स्टूडियो में नहीं लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पर 020-409-0807। रेडियो के क्षेत्र पर हर एक काम और काज के वास्ते आप डाल कर सकते हैं सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह में 10 बजे से लेकर दिन में 3 बजे तक 020-409-0807 पर।

0: सावरे से बावरे, हम आपको इस घंटे का पैगाम में सिर्फ 2019 के सिलेक्शंस सुना रहे हैं। 2019 के सिलेक्शंस आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो का पैगाम में।
1: U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl. NL.
0: Film genaamd Made in China, China.

क्या गाना है? हम आपको एक सिलेक्शन सुनाने वाले इस बार है द मेलोडी क्वीन ऑफ इंडिया आशा भोसले की आवाज में. फिल्म का नाम है सांड की आंख.

मेलोडी क्वीन ऑफ इंडिया आशा भोसले की आवाज में, फिल्म का नाम सांड की आंख। हम आपको इस एक घंटे का प्रोग्राम में सिर्फ 2019 के सिलेक्शन सुना रहे हैं, 2019 के सिलेक्शन। इट्स द रॉकिंग एंड मोस्ट सेंसेशनल, यू आर उजाला रेडियो का पैगाम। फोन का नंबर है रेडियो के क्षेत्र पर 020-409-0807। स्टे ट्यून्ड माय डियर, जनता की आवाज, यू आर तू जाने है तो।

अरे तू तैयार मैं तैयार, हम तेरे प्रेम पुजारी स्वाहा। मजेदार सुरक्षण आपके मध्य में प्रस्तुत किए गए हैं कुछ मिक्स मक्स।

मुश्किल से मैं संभला था, हाँ टूट गया हूँ फिर एक दफा, बात बिगड़ी है इस कदर, दिल है टूटा, टूटे है हम, तेरे बिन अब ना लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहे और हम।

हो तुझे कितना चाहे और हम, जुबिन नौटियाल की आवाज में आपने भी सिलेक्शन सुने हैं उजाला रेडियो जनता की आवाज युवाण का पैगाम है। आप सभी श्रोताओं के मध्य में कुछ मिले जुले संगीत मिक्स मार्क सॉन्ग्स पेश की जा रहे हैं आपकी खिदमत में। स्टूडियो एम्स्टरडम में हाजिर है आपका खादिम शहीद गुलजार।

बस एक से बढ़कर एक नमूने आपके खिदमत में अर्ज है। रूह का रिश्ता लीजिए, इस बार आपके खिदमत में आप ही के वास्ते यू आर की टीम की ओर से फिल्म का नाम गोल।

0: रूह का रिश्ता ये जुड़ गया, जहां तुम उड़ा मैं भी मुड़ गया। रास्ता भी तू है, मंजिल भी तू है, हाँ तेरी ही जरूरत है मुझे। कैसे समझाऊं मैं तुझे, मांगता हो तुझे यार तुझसे ही। क्या सिलेक्शन आपने भी सुने है उजाला रेडियो का पैगाम में। आपको इस एक घंटे का पैगाम में सिर्फ 2019 के नगमे सुना रहे हैं, 2019 के सिलेक्शंस।
1: आते जाते छोरे कहे हाउ ओल्ड आर यू, पूछे जो डिमांड मेरी मैं के कहूं।
0: एक और नगमा जो आपको हम सुना रहे हैं, फिल्म का नाम है सांड की आग।

अब बेबी गोल्ड गोल्ड गोल्ड गोल्ड बेबी गोल्ड ना है, बेबी गोल्ड यानी सोना। लीजिए का नहमा आपकी खिदमत में अर्ज है। बाईपास रोड फिल्म का नाम है सो गया ये जहां सो गई है आसमां। वंस अगेन प्रोग्राम में जुबिन नौटियाल की आवाज सो गया ये जहां।

हम आपको इस एक घंटे का प्रोग्राम में कुछ सिलेक्शंस 2019 के सुनाए हैं। अब आपको सुनाने वाला हूँ पंकज उदास की आवाज में एक गोल्डन ओल्डी।

0: कैसे हो?
1: 24/7
2: उजाला
3: उजाला उजाला
2: सुनते रहना प्रोग्राम को और सुनते ही जाना ब्रेक के उस पार हम आपसे इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। स्टेशन है यू आर उजाला रेडियो, मैं हूँ शहीद गुलजार। फोन का नंबर है आत्मनिष्ठ राशि पर सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह में 10 बजे से लेकर दिन में 3 बजे तक 020 409 08 07।

ये उजाला रेडियो है और यहीं से एक और प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया आप सुनेंगे।

और जगजीत सिंह की आवाज में गजल को आप सुने। वो जो अपना था वो किसी और का क्यों है। और इस प्रोग्राम में जगजीत सिंह फिर हिस्सा

यद मैं जिंदगी की शहर अपना घर लेकर आ गया। जगजीत सिंह की आवाज में आप सुने उजाला रेडियो पर, और प्रोग्राम है गीत और गजल की दुनिया।

0: मिलता।
1: कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। भूपिंदर सिंह की आवाज में आप गजल को सुने।

छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता। पंकज उदास की आवाज, उजाला रेडियो है ये। Wilt u een reactie achterlaten? Stuur dan een e-mail naar info@ujala.nl. Ter attentie van Vijay. Wel fijn dat u luistert.

मेहदी हसन की आवाज में आप सुने कि दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, एक दिल रुबा है मेरे दिल में जो हूरों से कम नहीं। पंकज उधास एक बार फिर।

मौत से पर्दा किया और कफन तूने तो शर्मिंदा किया। पंकज उदास की आवाज एल्बम नयाब से, उसी एल्बम से एक और गजल पेश है।

जाऊं होता नहीं फैसला, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा। हाँ, आप गीत को गजल को सुने पंकज उदास से, उजाला रेडियो है ये, गीत और गजल की दुनिया। तलत अजीज हिस्सा अब

प्यार तुम्हारा भूल तो जाऊं लेकिन प्यार तुम्हारा है। हम ये कहना चाहते थे आपसे कि गजल से अगर आप और मजा लेना चाहें तो ध्यान से सुनना चाहिए, समझने की कोशिश भी करें। बहुत सुंदर शब्दों में गजलें जो है तो लिखे जाते हैं। और हाँ, ये उजाला रेडियो है।

तैयार हो जा। सुन वालो, उजाला ला रहे हैं उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेनहाग में। फूड, म्यूजिक, डांस, शॉप, मार्केट, कल्चर, फैमिली एंटरटेनमेंट, टेस्ट, बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स। तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले। ब्रासा फेस्ट जादा 29 एंड जोंदा 30 अगस्त जिया इवेंट सेंटर डेन हाग में। Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the fire. अरे, सुन, वाक्टिकर, हाँ, चली ब्रासा फेस्ट, येस, फासे एन इस वोलेडिग आउटवर्कोग, सोल आउट, हाँ, हम बोलत रहली तो से तोग, हैब यार नोग गेन टिकेट्स, दन इस दिट ये कांस ओम दे अर्ली बर्ड टिकेट्स इन फासे 2, मोय सेजोन, इन फासे 2, ते स्कोरन, वाक्ट नी ते लांग, वांट इन दे वोलेंडे फासे गान दे टिकेट प्राइसे ओमहोग, तू जल्दी कर मौसी, चली घूमे, चली ब्रासा फेस्ट, हाँ, 100 चली ब्रासा फेस्ट, बेस्टेल न्यू फिया www.brasafest.nl. Is jouw business klaar voor de volgende stap? Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

0: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kistudio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baat Kersekte. Orham. Aap Se Baat Keringe. 020-363-0808. Ujala Radio Kee. WhatsApp nummer hè.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer met 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En er wordt ook gecontroleerd aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ujana Radio. वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इन्फॉर्मेशन ऑफ उजाला.net उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारियो जहां पर भी आप जाइए हम में साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ

ये उजाला रेडियो है सुनने वालों, और इसी के साथ आरंभ किया जा रहा है प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया। गीत और गजल की दुनिया, गीतों और गजले के साथ। आप तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं, और इत्मीनान से आप प्रोग्राम से लुफ्त उठाइए। और पहला फनकार जो आज का प्रोग्राम में होंगे तो वो है पंकज उधास जी।

मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भुला ना सकोगे। मिताली की आवाज में आप सुने उजाला रेडियो का प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया में। अब चंदन दास हिस्सा लेंगे।

उम्मीद पे डूबा कि तू बचा लेगा, अब इसके बाद मेरा क्या इंतहा लेगा। चंदन दास की आवाज में आप सुनिए मेहंदी हसन।

खाने के लिए आ मेहदी हसन की आवाज़ में आप सुने उजाला रेडियो का प्रोग्राम है ये गीत और गज़ल की दुनिया। और इस प्रोग्राम में एक बार फिर चंदन दास जी हिस्सा लेंगे।

चंदन दास की चंदन दास की आवाज़, हाँ चंदन दास की आवाज़ में आप इस सुंदर गज़ल को सुने उजाला रेडियो पर। और आप जो सुन रहे हैं ये हमारी खुशनसीबी है, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हिस्सा लेंगे जगजीत सिंह जी।

और जगजीत सिंह की आवाज में आप गजल सुने कि घर से निकले थे हौसला करके उजाला रेडियो पर, और प्रोग्राम का नाम गीत और गजल की दुनिया। पंकज उदास जी अब हिस्सा एक बार और प्रोग्राम में ले रहा है।

महके गुलाब आँखों में हमने ख्वाब रखे हैं आँखों में। आप सुने गजल पंकज उदास जी की आवाज़ में, और सुनने वालों अब इस प्रोग्राम में गीत और गजल की दुनिया में आज एक आखिरी गजल आप सुनेंगे, इस वादा के साथ कि फिर आ जाऊंगा, आप इंतज़ार कर लेना।